चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। तितली के रख पर बैठे लड़ने भिड़ने जाते हैं। हर कद

चींटी के पर में हाथी सारे बांध दिए नन्ही चींटी के पर में, बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में, फिर किसी को पकड़ा जकड़ा किसी को पल भर में, चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

0: मचाए हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

बार एक सेठ जी को व्यापार में बहुत घाटा पड़ जाता है, वो उदास रहने लगते हैं। धर्मपत्नी कहती है कि स्वामी, ऐसे चिंता करने से कुछ नहीं होगा, मेरा कहना मानो और आप भोले भंडारी की कांवड़ लाकर पावन गंगा का जल उन पर चढ़ाओ और हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सेठ जी अपनी धर्मपत्नी की बात मानकर पैदल चलकर नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं और हरिद्वार से बम बम की जयकार लगाते हैं, कांवर लेकर शिव का नाम जपते हुए महादेव पर जल चढ़ाते हैं, तो भोले बाबा उनको दर्शन देकर उनके सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं ये भजन।

0: उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंद उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो उजाला रेडियो आपके साथ
1: चलती है क्या नौ से बारह
2: You are. Uchala Radio Headlines. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Er komt veel rook vrij en een bovenliggend woongebouw is ontruimd. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder. En voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie.
3: En tot zover de headlines op Uchala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे अब हम क्या देखे। लता जी एंड किशोर कुमार, फिल्म कभी कभी का गीत आप सुने।
1: मेरी जान
0: ठहरो मेरी जान, एक बार फिर किशोर कुमार एंड लता जी।

करो कि जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, आ गले लग जा फिल्म का नाम, और गाने वाले किशोर कुमार एंड लता जी। उजाला रेडियो का प्रोग्राम को हम बना रहे हैं आपके लिए, तो अगला गीत सुनिए।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

शानदार सा सिलेक्शन पेश किए गए हैं उजाला रेडियो के जरिए। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा बताना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना। It's the rocking sensational, the leader in broadcasting. You are Ujala Radio का पैगाम, मिले जुले संगीत आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आपकी खिदमत में शहीद गुलजार हाजिर है और ऐसे में डिस्को किंग बप्पी लहिरी की आवाज। वारदात फिल्म का नाम, सन 1981 का फिल्म, 1981 का फिल्म। दिन हो या रात, के फोन का नंबर आप नोट कर लेना, आज नहीं तो कल के वास्ते आपको जरूर काम आएगा। 020-409-0807 रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते आप डाल कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक 020-409-0807। दिन हो या रात, क्या

जब की बातें हुई है डिस्को किंग बप्पी लहरी की, तो एक और सिलेक्शन हो जाए इन्हीं की आवाज में, द डर्टी पिक्चर नामक फिल्म से उल्लाला उल्लाला।

अजी छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की है तू बड़ी बुम्बार। उल्लाला उल्लाला फिल्म का नाम द डर्टी पिक्चर। संगीतकार विशाल शेखर और स्टेशन यू आर उजाला रेडियो। तू जाने है तो मिले जुले संगीत में हम आपको अब एक गोल्डन ओल्डी सिलेक्शन सुनाने वाले हैं। फिल्म का नाम नौ निहाल। मेरी आवाज सुनो, प्यार का साज सुनो। सुरो का बादशाह मोहम्मद रफी साहब।

लुत्फ आप उठाते ही रहना यूआर से, क्योंकि आप ही की मनोरंजन के वास्ते मिले जुले संगीत पेश की जा रहे हैं प्रोग्राम के दौरा। ये सिलेक्शन भी अर्ज है रेखा भरद्वाज और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

तो एक तेरा बलमा, एक मेरा बलमा। सेम सेम बट डिफरेंट। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, जाने मन क्या वो तुम हो। फिल्म आशिकी से आइए मिलकर सुनते हैं नजर के सामने जिगर के पास, वेरी रोमांटिक सॉन्ग। युवाओं के सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन प्रकट की जा रहे स्टूडियो से। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप खुश रहे और सलामत रहे। प्रोग्राम को बेशक सुनते रहना और अवश्य सुनते ही जाना।

फिल्म का नाम बधाई हो सजन बरिस सेंटी। मजेदार सिलेक्शन, आइए मिलकर सुनते हैं सजन बरिस सेंटी।

0: देव नेगी और हरजोत कौर की आवाज फिल्म का नाम बधाई हो सज्जन बरे सेंटी।
1: उजाला रेडियो रेडियो तू जाने है तो
0: और ऐसे में हो जाए एक और सिलेक्शन फिल्म का नाम द डर्टी पिक्चर। इसी फिल्म का बड़ी रोमानी सिलेक्शन मेरा इश्क है सूफियाना।

राहत फतेह अली खान की आवाज, यादा तेरी यहाँ ऑन द, ऐसे कुछ हंजू ले लेके मिले जुले संगीत मिक्स मार्क सॉन्ग्स आपकी खिदमत में उजाला रेडियो यूआर के जरिए पेश किए जा रहे हैं आज इस पैगाम में। और ऐसे में फिल्म का नाम सात खून माफ डार्लिंग, ए डार्लिंग, उषा उत्तुप और रेखा भरद्वाज की आवाज़।

It's the rocking sensation. You are Ujala Radio का पैगाम. शहीद गुलजार आपकी खिदमत में हाजिर है. अभी एक या दो सिलेक्शन हम आपको और सुनाने वाले हैं.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

7:07, ja, 9 minuten gezet, oké, okay, ja, het moet zijn 9 minuten over de klok van 7. Ujjala Radio, hey, mijn piare, sunuwalo, or mijn huratan ramdulare pande. जून का ये गर्मा गर्मा महीना जो है आखिरी शनिवार है 27 जून 27 तारीख जून तो यहां विराज मान रहा हूं मैं आपका सेवा करने के लिए और वो भी लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से ये प्रोग्राम फिर एक बार हम बनाएंगे सजाएंगे आप सभी के लिए और आप सभी के साथ रात्रि में 12 बजे तक 5 घंटे लगातार विद ब्यूटीफुल लेटेस्ट एंड ओल्ड लोकल सॉन्ग्स शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हैं और तहे दिल से स्वागत है स्वागत है स्वागत है आप सभी का ओनंग्स द हिट उम्मीद और आशा करते हैं कि फिर भी बहुत तो गर्मी है लेकिन फिर भी आप एंजॉय कर रहे हैं और वीकेंड है मेरे प्यारे सुनने वालों बारिश होने वाले हैं तेज और कल भी और इस वीकेंड के बाद टेम्परेचर जो है दिख रहा है कि नॉर्मल पर जाकर होंगे थैंक गॉड मेरे प्यारे सुनने वालों मैं रतन राम दुलारे पांडे हूं और आप सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदर से आपका सेवा करने के लिए बहुत बेचैन और बेताब हूं वन द साथ रखा वंत इज मुइलक मौका मिलते हैं तो आपका सेवा करने चले आते हैं लेकिन ऐसा भी है कि हम हफ्ते हो जाते हैं कुछ बीते ताकि हम आपका सेवा कर सकें en vandaag ben ik er en volgende week ben ik er ook en volgens mij daarna een aantal weken op de zaterdagavond हम सिर्फ शनिवार की बात कर रहे हैं dan zal ik er niet zijn मेरे प्यारे सुनो ये प्रोग्राम Saturday Night Fever फॉर्मूला आप सभी को तो मालूम है हमारे ये प्रोग्राम के दौरान जो लोग भी ऐप करेंगे स्टूडियो में और वो भी 020-363-0808 पर उन सभी के नाम से 8 बजे की इश्तिहारों के बाद एक नगमा उनके नाम से चलेंगे ये मग अलीन ये नाम दौर गेवे गीन टिटल्स और आप कहां से ऐप कर रहे हैं En ja, je mag wel zeggen van je wil een snelle nummer of een rustige nummer. Doet ja, nee toch. Dus 020-363-0808. Joarke Studio K WhatsApp, hè. Or, ja, heb je kamo kaantje, meri peri zin walo. Heb je vermaaisje, zeruri gebre, moutke gebre. Jankari, information jo aap praap kan na cha hoge. To aap somwaar se shaniwaar. Maandag tot en met zaterdag, subha met 10 bajé, shang met 10 bajé. Vanaf in de ochtend 10 uur tot in de middag 3 uur. Aap daar kan sakte hoe jala radio ke duftar ko. Op 020-409-0807. Ja toh, aap lagataar 24 ghante, aap mail bhi kar sakte hai. Aap ke kamukaj ke waaste. info@ujala.nl और मेरे प्यारे सुनने वालों सोशल मीडिया पर उजाला रेडियो भी एक्टिव है इंस्टाग्राम टिकटॉक फेसबुक और कौन कौन है हाँ हाँ यूट्यूब पे भी हैप यू अबोनेर नहीं तो मुझे अबोनेर अबोनेर ऑप यूट्यूब फन यू आर तरह तरह के खूबसूरत नगमाएं वहां जो हम अपलोड करते हैं आप उसे सुन पाओगे और मेरे प्यारे सुनने वालों गेट कनेक्टेड टू उजाला रेडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर टिकटॉक पर जो भी सूचनाएं हम वहां पर छापते हैं आसानी से आप पढ़ पाओगे किसी को टैग कर सकेंगे आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं आप खुद ही उसे शेयर कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं तो मेरे प्यारे सुनने वालों आपके व्हाट्सएप का इंतजार में हूं
और मालूम रहे कि 8 बजे के बाद आप सभी के लिए गीत हम चलाएंगे एंड दैट इज फुल हॉर्ड फ्रॉम बेनको मंड एपियस हमेशा की तरह। तो हम प्रोग्राम को आराम करते हैं यहां से मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर सैटरडे एंड एंजॉय यू आर टू जाने तक तो।

0: जिया प्यार मांगे जिया आसमां से ऊंचा या अमोय हो एक पुराना द सिंगर ऑफ रोमांस बीस महाबीर की आवाज में मेरे प्यारे सुनोलो स्वागत करता हूँ आप सभी को फिर एक बार। आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन है ये उजाला रेडियो। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रतन राम से आज फिर एक बार मौका मिला है इस शनिवार, इस गर्मी गर्मी शनिवार को आपका सेवा करने का। है 20 मिनटों ओवर द क्लॉक फन सेव सरे 7 बजने में 10 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनने वालों। और सैटरडे नाइट फीवर का फॉर्मूला जो लोग ऐप करेंगे उनके नाम से गीत हम चलाएंगे नाट ब्रेक फन अख्तूर। और आप हमें ऐप करेंगे ऑफ 020-363-0000 और ये भी बताएंगे विलियन स्नेल नंबर और विलियन रुस्तख नंबर तू जाने दो। विनेश छेरी को पेश करता हूँ फन फॉर्मेसी नो मर्सी।
1: हम तो पी अब दारू
2: क्या हुआ
1: हम तो पी अब दारू कसके है हमार कमाई। अरे हम तो पी अक्कड़ हमें कोई का कर पाई
3: नमिता किन सो बोई

pia bëkës ke daru Kuj ka kërpaj, atjes men kamaj, ja, da tjes val su bëja Gjugjis ke kamaj, usi mesi u pjaj or kaj Maralës me të matë to, kajje or pje sëp me të matë O foral weekend he, meri pjari sinualo, jep weekend huwe he To, misal ku qëtëk mëtëk bëne he Or kuch ek vetri me tatwar me drink li dan whiskey and so and that so ding dinya aur na garam ho jaye focus me wel dan da do je toch niet hum bhi chatak matak khaye la yaar dher pani hi hai aur ek aad glass me pani me jo hai citron aur ice blokia और एक टिक्की में ऐसे चबायला अंसतीच एंड नेचुरली मेट सब बोले सतीच सो मैं पिंडा सॉस मेरे प्यारे सुनोलो आपके व्हाट्सएप के इंतजार में है 02036308 यू आर के स्टूडियो का व्हाट्सएप है कुछ लोगों ने ऐप किए हैं और आप सभी के लिए जो अब तक ऐप किए हैं आप सभी के लिए ना द क्लॉक फन आख हम गीत चलाएंगे यूली से तो अलमाल इन इर्स्ट ब्लॉक के फन आख टोटल में नहीं 02036308 मेरे प्यारे सिनुवालो ये बंद अल्स अल्स बन ये फॉर मै अरे पापरे एशली एस में पेश करता हूँ या

Ja, er zit wat kern van waarheid in. Prabhas Kali. Ki duniya mein bahut drama hai. मेरे प्यारे सुन लो, ये उजाला रेडियो है और धीरे धीरे धीरे धीरे हो रहे हैं 4 मिनट ओवर द क्लॉक फन हाल फाख सरे 7:04 ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं. आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन है ये सैटरडे नाइट फीवर विद ब्यूटीफुल लोकल्स और वो भी लाइव एंड डायरेक्ट क्यू आर के स्टूडियो रोटरडम से. अगर युगो युगो है और अगर अपना मूडी जो है आप थोड़ा सा ढिल्ला करना चाहेंगे, हम भी चले कर खा तो आए. मौसम तो बहुत खूबसूरत है. खा लेकर फार या फार लेकर फार मेटल्स बीरन बोचे तू जाने तो. रिक हेडू और खिलियो अलबर्ग फन फॉर्मेशन रियल नेशन हियर ऑन यू आर

हाँ हाँ हमारे रनिया तो से बतावे हम बतिया विशाल हीरा मेड फार्मेसी द हीरा ब्रदर्स मेरे प्यारे से नोलो हीरा निवा व्हाट्सएप का इंतजार है आपका मेरे प्यारे से नोलो 02-363-0000 और आपको मालूम होना चाहिए अगर आप ऐप करेंगे इस वक्त तो आपका गीत ट्वीट ब्लॉक में हम चलाएंगे नामलक तुसे 9 and 3 आप व्हाट्सएप करेंगे 02-363-0000 पर geen titels doorgeven बस यही आपका नाम आपका शुभ नाम आप कहां से ऐप करते हैं फिल मेंशन से तो हुन नाम नहीं तरबाय डू दैट अल्सटब्लीफ दैट इज लेकर फ्लोट लेजर वेट इक मेट 10 वी बिन और आप कहां से ऐप करते हैं ऐसे खालसब्लीव कि तुम आगे एगो चलता गाना कि एगो रुस्तख वांट हम जब क्यूज करब तो तू जाने है तो थोड़ा सा त्रिनी पॉप हो जाए मेरे प्यारे सिनो वालों शलिता खेमराज पेश करता हूं

या खेमराजी और वो भी लतीता रेवती राम रूप को पेश करता हूँ पार्टी मिक्स ब्यूटीफुल एंड हेयर लक ट्रीन पॉप हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में एंजॉय

नीले गगन के तले धरती का प्यार तले। मेरे प्यारे सुनो लो, ये उजाला रेडियो है, सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं। फिर एक बार तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे और प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर जब भी मौका मिलता है मुझे चले आते हैं और पांच घंटे लगातार आपका सेवा विद ब्यूटीफुल लोकल्स से हम करते हैं। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 11 मिनट गुजर चुके हैं, वो भी 8 बजकर। आप सभी प्रियजनों को वालों को फिर एक बार रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। ये प्रोग्राम का फॉर्मूला मेरे प्यारे सुनो, जो भी ऐप करेंगे स्टूडियो में उनके नाम से गीत हम चलाएंगे। हैप गेडुल्ड ऑल स्टूडियो, हैप ऑलटेड गेडुल्ड, क्योंकि जिस तरह से ऐप आते हैं उसके हिसाब से भी लोगों के लिए गीत मैं चलाता हूँ। Niemand trekken we voor, we doen het gewoon keurig op de volgorde van binnenkomende appjes.

अरे मेरी ये कागज पंछी की तरह उड़ गई है। इम्र में मफराओ एंड मनेर बिहारी ब्रीडा एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड, मजा ले रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं नगमाओं के साथ हियर ऑन यू आर। तो आपके ऐप के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। गीत हमने तैयार करके रखा है केनत रखन जी के आवाज में। मैं नाम करता हूं ब्रेडा का, मफराओ एंड मनेर बिहारी जी और आप के साथ जितने भी लोग होंगे वहां उन सभी के लिए।

या केनत रखन मेरे प्यारे सुनने वालों, दीवाना हुआ बादल, खूबसूरत गीत रफी साहब जी का जो शम्मी कपूर पर पिक्चराइज किया गया, वो नगमा केनत जी ने गाकर सुनाए हैं आप तक, हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किए हैं। हुए शम्मी कपूर के बाद तो मेरे प्यारे सुनो, एक और शम्मी कपूर का मैशअप हमारी नजर में आए। गाने वाले हैं सुबी, और ये गीत जो है सुबी का गाया हुआ, हम नाम करेंगे स्वाह में जो रहते हैं और तैयारियां कर रहे हैं एक पार्टी जाने के लिए। हेरवाल्डो और मारखरीद जी, हेरवाल्डो और मारखरीद उमद, थैंक यू लिवेल आपके ऐप के लिए। सुबी का गाया हुआ ये गीत आप दोनों के नाम, डार इन स्वाह।

या मिस्टर सुबी मेरे प्यारे सुनने वालों, शम्मी कपूर का एक खूबसूरत मैशअप और ये गीत जरूर से जरूर आपको ले गए होंगे पुराने यादों की ओर, है ना। पता नहीं ये साल में शम्मी कपूर जी का प्रोग्राम हमने तैयार करके रखा है बैक टू द फ्यूचर में या नहीं, लेकिन बॉय ओ बॉय आने वाले नए महीना का पहला दिन, केती कोती वाला दिन इन यूली को पेश करेंगे रात्रि में प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, और वो प्रोग्राम में एक ऐसा कलाकार का प्रोग्राम सजाएंगे जिनकी म्यूजिक जिस तरह से उन्होंने सजाए हैं बनाए हैं, इतने सारे खूबसूरत गाने इनका है कि आप सुनेंगे तो भरपूर आप एंजॉय करेंगे। बस प्रोग्राम एकदम तैयार है मेरे प्यारे सुनने वालों, और कुछ हफ्तों के लिए उनका ही प्रोग्राम बनाएंगे, और किनका प्रोग्राम हम तो फिलहाल नहीं बताएंगे, आपको सुनने पड़ेगा और वो भी गूंजता है, और आपको सुनने को मिलेगा बहुत बहुत सारे खूबसूरत गीत आनस्तांद वंस्तक। नेचुरली डोंडा दाख को भी हम रहेंगे दो तारीख, पहला बुधवार, पहला गुरुवार और पहला शनिवार नए महीना का आपका साथ हम देने चले आएंगे। अगले गीत मेरे प्यारे सुनने वालों जो हमने तैयार करके रखा है, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन इनकी आवाज बहुत खूबसूरत है और वे बैक सॉन्ग आप तक पेश करने जा रहा हूं, और इसे हम नाम करेंगे जो हार्लेम में रहते हैं आइलिन डंकीवेल, चुन करने के लिए, हमेशा सपोर्ट करने के लिए और आपके ऐप के लिए दिल से धन्यवाद। रामोन लक्ष्मण जी का गाया हुआ ये नगमा एक बार मुस्कुरा दो, मैं आइलिन के नाम करता हूं एट हार्लेम।

एक बार मुस्कुरा दे। ये था रामोन लक्ष्मण जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत पुराने एल्बम से हमने निकाले हैं पार्टी टाइम ब्यूटीफुल। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों, 2 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी सरे 8:03 ऑफ द क्लॉक फन हालफ नीह। आप ही का मन चाहट और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। वीकेंड है मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ भी दोस्तों हित प्रेमियों के साथ कुछ हम खा रहे हैं एन लेकर कूल द्रंकिस उकवे मुत डेस वरमत दोस्तान है ना। यहाँ पर आपको ऐप करना है और जो लोग ऐप करेंगे उनके नाम से गीत हम चलाएंगे। खेन टिटल्स दोर खेव मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको तो मालूम है खेन टिटल्स दोर खेव नगमाएं हम चुन चुके हैं सभी लोकल्स है, मतलब ये कि गीत फिर से गाया गया है, सजाया गया है और हमारे ही प्लेलिस्ट से गीत निकाल कर आप तक पेश करेंगे आपके नाम से। नतुलक आप बता सकते हैं कि आप एक चलता गीत चाहते हैं या रुस्तख। आपको ये भी मालूम रहे मेरे प्यारे सुनने वालों, अगर आप ऐप करेंगे दन से चिवर्स हैं लेकिन ब्लॉक किया फन या मिस्किन नो खेन ब्लॉक किया फन नहीं खतो 3 मा अंदर्स वोटत एक ना 3 यूर। कौनो कौनो जो नगमाएं हैं जो हम चला रहे हैं, कुछ लंबे हैं कुछ छोटे हैं, तो उसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूं। हम सिल्फेन में सुशीला चंद्रिका सिंह जी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं और उनके साथ है उनकी बेटी, उनके प्रिय बेटी मालती जी। तो आप दोनों मजा ले, एंजॉय योर वीकेंड। और बेहद खुशी है हम कि आप दोनों फिर एक बार चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं। En ik zag jullie drinken ergens op een picture. En natuurlijk is dat natuurlijk ook de bedoeling. Lekker drinken, verkoeling zoeken. Genieten van het weekend. Genieten van elkaar. En enjoy this song. Moti Mala Bhola Singh. Jo gaenge. Sushila Chandrika Singh aur Malti ji ke naam karta hoon. Jo Amstelveen mein sun rahe hain program.

Golden Classic Meshik मेरे प्यारे सुनने वालों, ये मेशिप मोटी माला भोला सिंह जी की आवाज में आप तक हमने पेश किया है हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में। मेरे प्यारे सुनने वालों, अगले एपर्स मैं देखता हूं जो हमारे लिस्ट पर है, भैया जोनी कालीचरण अयोध्या रोटरडम। जोनी कालीचरण भैया जी हमेशा भी जब ही सुनते हैं मौका मिलते हैं तो एप करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद जोनी जी। एक हॉट बैठक हमने तैयार करके रखा है और कृष्णम छेजी जी का गाया हुआ जोनी कालीचरण के लिए अयोध्या रोटरडम।

भैया क्रिशुम छेदी मेरे प्यारे सुनने वालों, और मुझे मालूम है आपके बदन में ये तो खौलफ चलने लगे हैं। अगर आप इस पर हिलाएंगे स्खेरमेस वाला बैठक गाना या और वो भी इस टेम्परेचर में, बाप रे दादा। मेरे प्यारे सुनो, अगले गीत की ओर आपको ले चलते हैं, और गीत जो हमने तैयार करके रखा है स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह के लिए। हंस लक्ष्मण सिंह सुतमेर का हमारे प्रिय स्वागरी है, जो हमेशा भी सुनते हैं और जब भी सुनते हैं पावर करते हैं। उसके लिए दिल से धन्यवाद स्वाग। एंजॉय योर वीकेंड, और ये नगमा आपके नाम करता हूँ।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो सेवा में जो पेश हुआ है इस घंटे का आखिरी गीत में पेश करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे सुनो वालों एंड डन क्रे फॉर द ब्रेक फन नई खुर और 9 बजे के बाद बाकी एपर्स के लिए भी हम शुरू करेंगे गीत चलाने के लिए एंड ये मखनोस्तीज एप मेरे प्यारे सुनो वालों ना द स्टूडियो 02033 0808 उजाला रेडियो का स्टूडियो का व्हाट्सएप है आप अवश्य लगातार ऐप कर सकते हैं किरण किरार और मिलते हैं ब्रेक के उस पार

पारी करो रे पारी करो। काफी मशहूर ये नगमा ये था सतीशवा नाठे। और स्टेशन का नाम उजाला रेडियो। मेरे प्यारे सुनने वालों, दैट इज वीकेंड, दैट इज शनिवार, और घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 9 मिनट गुजर चुके हैं, वो भी 9 बजकर। मैं हूं आपका यारों का यार रतन राम दुलारे पांडे, लाइव एंड डायरेक्ट इवार की स्टूडियो रतनराम से पेश कर रहा हूं सैटरडे नाइट फीवर विद ब्यूटीफुल लोकल्स। मेरे प्यारे सुनने वालों, इतने सारे गाने रिलीज हुए हैं और कुछ हफ्तों के लिए भी मैं नहीं था, तो काफी नगमाएं चला रहा हूं लगातार जो रिलीज हुए हैं। और अगर मौका मिला मारा देंगिक नीत मिस्किन वालातर, तो एक दो पुराने लोकल्स भी सेवा में पेश करेंगे जरूर जरूर जरूर। रोटरडम में सुन रहे हैं प्रोग्राम राकेश और नताशा, ऐसे से लेकर ऑफिसी थे भाई सुस सरिता। तो राकेश और नताशा एंड सरिता और जितने भी लोग आप लोगों के साथ है, एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। और आपके अब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये नगमा आप सभी के नाम।

दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरी दिलबर, मेरा ये एतबार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, 020-363-0808 जहां पर आपको ऐप करना है अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से मैं एक गीत लोकल चलाऊं। सुन रहे हैं इस वक्त अलमेर बैठू में स्वागरी राज नंदन और उनके साथ साथ भी आरती नंदन भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं। तो आप दोनों के नाम आरती और राज नंदन के लिए गीत तैयार करके रखा है। एंजॉय अ मूवी जैसी ब्लू स्टाइल डुएट सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। 7 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनने वालों, वो भी सरे 9 बजने में। एनथिस नोक्सटेज हॉटबर्ड, पता नहीं ये बारिश इधर रोतनाम में कब होंगे। We need it badly. सुना है कि हॉलैंड के साइड फराल ओस्त में हलचल हो रहे हैं या होने वाले हैं। Mensen, wees voorzichtig en let goed op jezelf. Amrita's ka app aaye hai. Suriname, Nikeri se Amrita ka app aaye hai. और अमृता के नाम गीत हम चलाएंगे। अमृता बोले फोर मैन मन अली खान, तो अमृता फोर अली खान, ठीक है। खूबसूरत गीत हम चलाएंगे और ये खूबसूरत गीत जो हमने तैयार करके रखा है, द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन की आवाज़ फॉर अमृता एंड अली खान, आउट निकेरी सुरिनामा।

एक जान जुड़ाना होंगे, बस ये वादा रहा। ऊ जाने जा खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, और फिर से सजाए हैं आपके लिए, गाए हैं द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन। अगले गीत के ओर आपको ले चलेंगे, विनोद भुंडी जी गीत गाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये नगमा अल्फा नंदरायन का रहने वाली कमला जी के नाम करेंगे। कमला जी थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए, एंजॉय योर वीकेंड एंड एंजॉय नतुलक सैटरडे नाइट फीवर, और उम्मीद और आशा करते हैं कि ये गीत भी आप एंजॉय करेंगे जो आपके नाम से चला रहा हूँ। थैंक यू वेल फॉर योर ऐप ये कमला अल्फा नंदरायन।

deformatie, elegans mere pyare se nawalo Vinod Bhundi, chum lo hont tere, dil ki yehi khwaish hai, ya muh hai. Mere pyare se nawalo, the best of the best locals, only here Saturday Night Fever mein, on your favorite radio, Ujala Radio. और प्रोग्राम लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रतनाम से सजाया और बनाया जा रहा है मेरे प्यारे सुनने वालों, हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर, जो डनाख के मिका के लिए हम गीत चलाएंगे. थैंक यू वेल मिका फॉर योर अपीयर और ऑलवेज सपोर्ट. फेन दचवीर सोल साल तहत अफगस्तम बेंद. एंजॉय योर वीकेंड. और देवी जगमोहन की आवाज में गीत हमने जो तैयार करके रखा है, प्रख्त खसंगरस उनकी आवाज में गीत मिका के नाम करता हूं. मिका डंकीवेल, एंजॉय योर वीकेंड.

या देवी जगमोहन, मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत आवाज उनकी और गीत उन्होंने फिर से गाए हैं, सजाए हैं हीरो निवार, हमने आप तक बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। मेरे यारों का यार प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और वो है डैनी लक्ष्मण सिंह और मीना जी। तो अमीना जी और डैनी, एंजॉय योर वीकेंड, चुली से लेकर खान वन लसी एक स्ट्रांड वासत नीत वार्म ऑफ नई बैड से सत लेकर कूल है मैं द ब्रीज। जिस तरह से हो आप भरपूर एंजॉय करें, अपना सेहत रहे, अपना वीकेंड डैनी और मीना जी। मनु और तत्वल दानसोर, क्योंकि आप दोनों के नाम करता हूं ये गीत, प्रख्त खरीमिक्स दोरमैन कुलेखा डीजे ला फिएस्टा।

Ya Beautiful Mary Pierre Zenoalo. Prachtige DJ remix with beautiful songs mere pyare Zenoalo. Is ghante ka aakhri geet pesh karne jaunga mere pyare Zenoalo aur is aakhri geet ke baad hum 10 baje ke break ki or badh chalenge. Aur us break ke baad mere pyare Zenoalo seva mein phir hum hazir rahenge. Ik heb niet zoveel meer namen op mijn lijst. Kuch naam aur hai. Logon jinhone ye kash uthaye hain app karne ke liye. To un sabhi ke liye zarur se zarur naturally hum geet chalayenge. Aur abhi tak aapko mauka diya ja raha hai. Aap hi chahte hain ki aapke naam se geet main chalaun. Ya dan moet je een appje sturen naar 020-363-0808. 020-363-0808. इस घंटे का आखिरी गीत मेरे प्यारे सुनो लो आईफी जहांगीर के नाम करता हूं आईफी जहांगीर जो आमस्टरडम में रहते हैं हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं पावर करते हैं सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आईफी बहुत-बहुत शुक्रिया डंकीवेल ये नगमा द किंग ऑफ हिंदी पॉप का गाया हुआ आपके नाम करता हूं एंजॉय और मेरे प्यारे सुनो वालों मिलते हैं ब्रेक के उस पार

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवराघ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवराघ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, अनिल भीम और कविता सुखू जी की आवाजें उजाला रेडियो पर आप चून किए हुए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और गीत रब मानिया आप तक हमने पेश किया है। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों 9 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 10 बजकर। द लोकल्स चल रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है सैटरडे नाइट फीवर। तमाम एपर्स के लिए गीत हम चला रहे हैं और अगले गीत जो हम पेश करने जा रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, वो है प्रिंसेस राज के नाम हम करेंगे जो रतनाम में रहते हैं। तो आपके ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेल प्रिंसेस राज जी, ये गीत आपके नाम करता हूँ। And that is none other than the king of Hindi pop, Umar Vaagithu Zain.

किंग ऑफ इंडी पॉप मेरे प्यारे सुनने वालों, और अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे। सतिया के नाम एम्स्टरडम, मेरे प्यारे सुनने वालों, सतिया के नाम गीत हम चलाएंगे। सतिया जी को हम कहेंगे डंकी वेल एप करने के लिए और एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर वीकेंड। और गीत जो हम चलाने जा रहे हैं अभी दा रमजान और कुमार सानू की आवाजें फॉर सतिया।

मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, कुमार सानू द टाइगर और अबीरा रामजान जी की आवाजें हीरो निवार मेरे प्यारे सुनो वालों। और अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, जो हम नाम करेंगे प्रभा जी के नाम। प्रभा जी आयत अमसनम सिंत्रम, आपके नाम करता हूं खूबसूरत गीत अन प्रख्तक मोय रिमिक्स मुंबा चिल रिमिक्स। और बेहद खुशी है हम कि आप ही चून किए हुए हैं। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनो वालों, ये मुंबा चल मिक्स हमने जो आप तक पेश किया है, 5 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनो वालों, सरे 10 बजने में, जबकि हम आपको ले चलेंगे मशहूर रामदेव चैतू का गाया हुआ एक नगमा फिर से सजाया गया है, गाया गया है जोछना जी के जरिए, और ये गीत हम ने तैयार करके रखा है, पेश करेंगे हेर एंद्रू और चित्रा जी के नाम। एंजॉय योर वीकेंड चित्रा जी, एंद्रू जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। सैटरडे नाइट फीवर में जोछना का ये रामदेव चैतू का नगमा चित्रा जी और हेर एंद्रू जी के लिए।

ओ प्रीतम प्यारे, तू कहाँ बसते हैं? जोशना जी की आवाज और गीत, रामदेव चैतू जी उस्ताद, इनका नगमा जोशना जी ने फिर से गाए हैं, सजाए हैं। रिमेम्बर दिस इज यू आर, मेरे प्यारे सुनो, मौका दिया जा रहा है अब तक, अभी तक आप के ऐप करने के लिए 03 3 9 9 9, लेकिन आपको ये भी मालूम रहे कि 11 बजे के बाद दंदराई वाली मसूल्स तो आज चलता नंबर विल दान कान एक नोख एन ऑफ टू है मेर नी। लेसर शहर में सुन रहे हैं प्रोग्राम सांदर और सरदा, तो आप दोनों को हम कहेंगे शुभ वीकेंड, बेहद खुशी है हम कि आप दोनों चून किए हुए हैं। अगले गीत एक मैशअप है द 90s का, द फरमात सी द टाइगर्स, और ये गीत सरदा और सांदर के लिए। थैंक यू वेल फॉर योर एपिया।

ब्यूटीफुल मैशअप मेरे प्यारे सुनने वालों, एंड दिस इज द फॉर्मेशन द टाइगर्स। द 90s का एक खूबसूरत मेटली सजाए हैं और आप तक बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ हमने पेश किया है। हमारे प्रिय सूरीनाम में भी प्रणाम से जुड़े हुए हैं, आनंद ले रहे हैं अनीता और फैसल। तो अनीता और फैसल के लिए गीत अगले हम पेश करने जा रहे हैं दविंद्र सिंह शिवनाथ और सविता सिंह की आवाजों में।

मैं भौरा तू है भूर, ये दिन मत भूल जवानी, अंडा त्यौहार जवानी लौट के आएगा ना। सविता सिंह और रविंद्र सिंह सिवनाथ जी की आवाजें प्रख्त भलाय दौड़ माएस्त्रो ज्वाला उज्जला रेडियो है ये मेरे प्यारे सिनवालो। अगले गीत की ओर फारिस बरसाती सुरनाम का एक सिंगर और फन फॉर्मेशन फॉक्स में द स्टार्स सिंध मार्ट का पूनम और नरेश के लिए गीत हम पेश करने जा रहे हैं। फेन द चुलियो का फस्टम सेन पूनम जी और नरेश एंजॉय गीत फारिस बरसाती का गाया हुआ आप दोनों के नाम।

Ya Beautiful, मेरे प्यारे से नालो कॉकटेल का ये नगमा डुचको हमने आप तक पेश किया है। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 11 बजे के और मेरे प्यारे सुनने वालों, एक गीत हमने तैयार करके रखा है आइकॉन मैशअप फंड क्रिम्स शरवन की आवाज में। चलो हम पेश करते हैं।

या मेरे प्यारे सुनो, ये था शिवम राजा राम, सास घरे ना साबुन के मारे। ये था इस घंटे का आखिरी गीत मेरे प्यारे सुनोलो। हम इंतजार में हैं ब्रेक के, और ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर जरूर से जरूर हम मिलेंगे। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

सितारे का ब्यूटीफुल रिमिक्स मेरे प्यारे सुनो वालों सेवा में हमने आप तक पेश किया है। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनो वालों और हम आखिरी घंटे में अनान पड़े हैं। इट इज 8 मिनट ओवर द क्लॉक फन 11:08 गुजर चुके हैं और इस आखिरी घंटे में खावा अली मसूल सराय मेरे प्यारे सुनने वालों रोहित छेड़ी को हमने तैयार करके रखा है और इसे हम पेश करेंगे दिल दे दिया है गीत का बोल।

रोहित छेदी मेरे प्यारे से नॉलो रोहित छेदी की आवाज मेड फॉर्मेसी द स्टार्स एंड वी गान इवन टुरुख इन द टाइट बीस महाबीर सुरा ही दार गर्दन कोयल सी है आवाज रिमेंबर दिस इज यू आर मेरे प्यारे से नॉलो उजाला रेडियो सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं विद द ब्यूटीफुल लोकल्स

सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज, द सिंगर ऑफ रोमांस भीष्मा बीर एंड दिस इज रेशमा। मेरे प्यारे सुनो, जाने कहां गए वो दिन,

सत्यम माता दिन मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं। एंड वन ऑफ द फाइनल सिंगर्स हमारे हॉलैंड किंडर अब हिस्सा लेंगे हमारे ये प्रोग्राम में। सागर मलिक, इंतहा हो गई इंतजार की।

संजय योढ़ा मेरे प्यारे सुनोलो, तू मेरी शायरी और तू है मेरी गजल। निसाम वागित हुसैन को पेश करता हूँ आपकी बार प्रोग्राम में। कि दूरी ना रहे कोई, 6 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सिनवालो, सरे 11 बजकर। आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, सैटरडे नाइट फीवर। आप सुन रहे हैं

निजाम वागित हुसैन, दूरी ना रहे कोई। और ये है द लेजेंड नदीम खान, तेरे मेरे बीच कैसा है ये बंधन।

नदीम खान मेरे प्यारे सुनवालो, और नदीम खान के बाद कल्याण किरार को पेश करता हूं विथ हिज रॉक बैलेट यादें।

कल्याण केदार मेरे प्यारे सुनवालो, अब वक्त आ गया कि मैं आखिरी गीत पेश करूं मेरे प्यारे सुनवालो। आखिरी गीत आप सुनेंगे फन फरमासी द गुड वाइब्स, लेकिन गीत चलाने से पहले मेरे प्यारे सुनवालो आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से हमने ये प्रोग्राम को सजाए हैं आप सभी ने भरपूर भी एंजॉय किए हैं। अगले हफ्ते वो भी 4 तारीख जुलाई को ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर फीड हम पेश करेंगे। मेरे प्यारे सुनो, रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। आप सभी से फिर हम मिलेंगे वंस तक एंजली। टेक केयर और रिमेंबर आई लव यू ऑल।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।